शायर अगे लिखता है बंदा है बंदा बन इंज ना घूरी पा बेशर्मी दी मैं क्यों खां तू अपने इस गम नू चूरी पा बस रब अगे हो दुआ कर जिन्ना भी करें पूरी पा अपने मैं नू रस्सी दूरी पा।

ये सज्जन कदी दुश्मन क्यों लगता है? ये सज्जन ही तो दुश्मन लगता है। अपने बहुते नेड़ियां नू कदी कदी उन्हां नाल लड़न नू बहुत जी करता है। लड़ाई ते प्यार एक पतली तंद दे इधर ते उधर रे पासे ने। कदी कदी बहुते प्यारियां नू कदोलन मदोलन दा जीवी करता है। उस प्यार ते जंग दे विच ये अंदर ही लिखा होंदा है चल रहण दे।

मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं और हश्र के रोज कौन गवाही देगा मेरी यहां सब तेरे तरफदार नजर आते हैं।